चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार देन, जिन्हां अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी दा बलिदान दिता हिंदू धर्म दी रखिया वास्ते, अपने बच्चियां नूं कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नूं वारी वारी मौत दे मुंह विच धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुती ते आहुती देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजिही महानता केवल उन्हां महापुरखां विच ही हुंदी है जिन्हां सैकड़े जन्म योग साधन बतीत कीते होण अते फिर जिहड़ा महापुरश शिखर ते पहुंच जांदा है ओह ही भविख नूं देख सकदा है जिस नूं साधारण नजरां वाले नहीं वेख सकदे। इस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जगीरदार सन और एक दिन शिकार खेड देया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदो हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, ओदे पेट विच

आश्रम बना के रहन लग पिया। अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज

लंबियां बाहां वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास वाल देख के मुस्कुरा रहे सन। ते महाराज ने माधोदास फिर भी पूछता है तुसी कौन हो, तो गुरु महाराज ने अमृत परी मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां। बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदिआं नूं नीहां विच चिण दिता गया। ये सारियां गल्लां माधो दास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वो मेरे पिता दा घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिदा, पर सती जी ना मने तां भगवान ने जाण दी इजाजत दित्ती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा हुए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी ता भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। ता उसे वक्त उन्होंने दशक प्रजापति का सिर वड के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलव आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं

अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहे, मैं जालमा का नाश कर रहा, उन्हां किलिया नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे नी, ओ शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे नी। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ।

एक ऐसा शहर सी जिदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचया अपनी फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दी निगाह नाल देखया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद

किए है बीच की शिक्षा लैन वाले नु सिखे जेड़ा हर वेले सिखदा रहे ओ सिख सिख नाम ही उसे रहे जो हर वेले सिखदा है। बाबा जी बख्शिश करते सन बचना द्वारा सिख मायाधारी हो जाए ता भी सिख

अगर तू परमेश्वर दा नाम जपेंगा ओदी ओट ओदा आसरा लवेंगा इना भगतां दी तरह ओ परमेश्वर तेरी भी रखिया करेगा तैनू ओ परमेश्वर हर सुख हर वड़ियाई अते अपने नाम दे नाल भी जोड़ेगा और अपने वर्गा बना लवेगा। इस शब्द दे विच अनेका महापुरुषां दा जिक्र नामदेव जी ने कीता है, पर आपां भगत अमरीक दे जीवन बारे विचार करांगे। भगत अमरीक एक बड़े ही चक्रवर्ती और प्रतापी राजे हुए ने। राजे भी सन पर राजकुमारन दे नाल भगती भी कमाई, जिदे सदका अज आपां उन्हां दे जीवन बारे विचार कर रहे हां। नामदेव जी बयान करदे ने, अमरीक को दियो अभय पद, भगत अमरीक नूं अभय पद दी प्राप्ति हुई, जन्म मरण दे चक्कर तों रहित हो गए। राज पवीखन अदक करियो, जिस तरह पवीखन नूं श्री रामचंद्र ने रावण नूं मार के लंका दा राज दिता, क्योंकि जेड़ा भी भगत हुंदा है उन्हूं सुख परमेश्वर दिंदा है। इसे तरह जेड़ा अमरीक भगत है इन्हूं भी परमेश्वर ने बड़ी उच्ची पदवी दिती, भगतां दी पदवी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सवैये महल्ले तीजे के जिदे विच अमरीक भगत बारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस तरह जिक्र कीता है।

मध्य भारत उड़ीसा वाल सी। ए राजा अमरीक राज तां करदा है, पर राज पाक दे सुख अपने वास्ते नहीं समझदा है। राज भी कर रहे है पर नाल भगती भी। ए भी भगती तों दयाल होके विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अमरीक की रक्षा वास्ते हर वक्त इन्हां दे कोल रखिया होया सी कि जदों भी भगत ते कोई पीड़ पवे तो सुदर्शन चक्र नूं ए हुक्म सी तू अमरीक की रक्षा करनी। इस गल की गवाही भाई गुरदास जी भी भरते। राजे अमरीक ने वर्त रखे, पूजा पाठ कराया, यज्ञ कराया और दान पुन करने वास्ते बिंद्रावन पहुंचया। बिंद्रावन जिथे कृष्ण भगवान जी रिहा करदे सन, इस जगह आके 6 करोड़ गौवां राजे अमरीक ने दान कीतियां। 6 करोड़ गौवां दे नाल सोना चांदी अनेकां वस्तुआं होर भी दान कीतियां। धर्मी बड़ा सी, नेक बड़ा सी, दान पुन करके ए राजा अमरीक वापस अपने महलां नूं तुरिया। महलां विच आके वर्त तोड़ना सी। वापस आंदे आ रस्ते दे विच दुर्वासा रिक्की दा मेल होया। राजे ने दुर्वासा रिक्की नूं नमस्कार कीती, पर दुर्वासा रिक्की क्रोधी बड़े सन। कहन लगे, राजन तू इस वेले कित्थों आ रहे? राजा अमरीक कहन लगे, मैं बिंद्रावन तो आ रहे हैं और महलां विच जाके वर्त तोड़ना है। मेरी इच्छा है आप जी महलां विच आके चरण पाओ, भोजन छको ता मैं वर्त तोड़ा। दुर्वासा रिक्की कहन लगे, ठीक है राजन, जदों तक मैं भोजन ना छका तू वर्त नहीं तोड़ना, मैं आवांगा जरूर। इस गल नूं भाई गुरदास जी ने अपनी वार दे विच इस तरह बयान किया है।

अमरीकन लगा सत बचत ए दुर्वासा रेखी नदी ते पहुंचया इशनान कीता पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्वासा रेखी चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा है। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्वासा रेखी नहीं आणगे क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा मैं वचन दिता जे दुर्वासा जी ने प्रशादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नूं बुलाया सारिया कहा समा बीता जा रहा दुर्वासा रेखी नहीं आया या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारिया की सलाह से भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया ते दुर्वर्त तोड़िया उधर दुर्वासा रेखी आ पहुंचे। भाई गुरदास जी

दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म किया, ओ चुड़ेल जिदे हाथ विच किरपान है, भगत अमरीक नूं मारन वास्ते वधी, सारे दरबारी महापुरुष हैरान हो गए कि दुर्भाषा ऋषि एक महापुरुष होके एक केड़ा अधर्म दा काम करन लगे। पर ओ परमेश्वर हमेशा अपने भगतां दी रक्षा करता है। ए चुड़ेल मारन वास्ते अगे वधी तां भाई गुरदास जी बयान करदे ने, चक्र सुदर्शन काल रूप होए, पिहावल गर्भ गवाया। जिहड़ा सुदर्शन चक्र

रूप होके दुर्वासा ऋषि दे कोल आ गया। सुदर्शन चक्र ने सारिया तो पहला उस चुड़ेल दी ओ बां वड़ी जिदे विच पुण्य कृपान खड़ी सी, फिर दूसरी बां वड़ी, फिर सुदर्शन चक्र ने उस चुड़ेल दा गला वड़ के उसका अंत कर दिता। चुड़ेल मर गई ते हुण सुदर्शन चक्कर दुर्वासा रिखी के द्वाले हो गया। ते दुर्वासा रिखी जेड़ा बड़े हंकार विच गुस्से नाल अखां लाल करके कोल खलोता सी, ओ हुण इन्ना डर गया, ए भी भुल गया कि मैं एक ऋषि हां, जे भजांगा तो लोग की कहणगे, पर जान सब नूं प्यारी है। ताकि होया बामण पन्ना जियो लै कि ओ बामण दुर्वासा ऋषि हुण भज पिया कि किसे तरह अपनी जान बचावा। बामण पन्ना जियो लै रखिया ना हंगण देव सुभाया, हुण कोई भी देवी देवता इहदी रखिया करन नूं तैयार नहीं, क्योंकि जिन्हू भगवान मारे और नुकेरे कौन बचावे। ए दुर्वासा ऋषि अमरीक दी सभा विच भजया, इंद्र लोक चला गया। कहन लगा इंद्र देवते नू, मेरी जान बचा, पर इंद्र कहन लगा ए मेरे वस दी गल नहीं। ता दुर्वासा ऋषि शिव लोक नू चल पिया। शिवजी भगवान कहन लगे हुण मेरे भी वस की गल नहीं। दुर्वासा ऋषि हुण ब्रह्म लोक नूं गया, ता ब्रह्मा जी कहन लगे तेनू बचाना हुण मेरे वस की भी गल नहीं। ता फिर दुर्वासा ऋषि बैकुंठ नूं चला गया विष्णु भगवान दे कोल। ता विष्णु भगवान कहन लगे कि मवी तेनू नहीं बचा सकता। भाई गुरदास जी इस गल की गवाही देंदे ने, इंद्र लोक शिव लोक तज, ब्रह्म लोक बैकुंठ तजाया। सारे पासों इस नू आसरा जदू ना मिलिया, दुखी हो गया दुर्वासा ऋषि के सुदर्शन चक्कर मेरा पिछा नहीं छड़दा। ता उस वक्त देवतियां भगवान सन सिख दे सबना समझाया, देवतियां ने अते भगवान विष्णु ने सारिया ने सिख दे ए सिख्या दिती, सबना समझाया, सारिया ने समझाया है कि दुर्वासा तू भगत नूं बुरा कर, तू भगत नूं दुख देना चाहिया, इस करके अगर वो भगत चाहेगा ताई तू बच सकेगा, नहीं ता तेरा बचना बड़ा

ओ परमेश्वर, किस तरह उन्हें भगत अमरीक की रक्षा की थी। नाउ ने दिठाकर दई सुदामे प्रू अटल अजूना टर अमरीक की तरह सुदामे ते कृपा की थी। ध्रुव भगत ते कृपा की थी। भगत हेत मारियो हरनाकस भगत वास्ते नरसिंह का रूप बना के हरनाक्ष का अंत किया। नामा कहे भगत बस के सब अज हूं बल के द्वार करो। नामदेव जी कहते ने केसव परमेश्वर नु कहा सोने केसा वाला परमेश्वर कि वह जरा परमेश्वर है वह भगतों के वास है। इस वास्ते तो अज तक वह बल राज के द्वारे से खलोता होया है। तो गुरु साहब जी भी बाणी विच कहंदे ने भाई अमरीक ने सिमरन किया राजा होण दे नाल राज भी कमाया ते सिमरन भी ते अभय पद नू प्राप्त हो गया। आओ भाई तुसी भी सिमरन करो दुनिया दे काम कार करदियां अते अपने जीवन नू

प्यारे गुरुदेव, अपने इस पवित्र शब्द के द्वारा जो विचार सानू बख्श रहे हैं, सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाने। महाराज जी देखते हैं कोई गृहस्थी है, कोई उदासी है, कोई वाहिगुरु का भगत अपने आप को समझता है, दास है। गृहस्थी अपने आप को अपनी जगह ठीक समझते हैं, उदासी अपने आप को बड़ा उच्चा समझता है कि मैं सब कुछ त्याग के उदासी हो गया हां। कोई वाहिगुरु का दास अपने आप को सोचता है मैं बहुत भजन भक्ति करता हूं, उसका दास हां। गुरु बाबा जी इन तिना वर्गों जदों देखते हैं तो महाराज जी ये देखते हैं कि चाहे कोई उदासी है, चाहे कोई गृहस्थी है, गोल सबना दा एक ही है। गोल एक ही है, निराई उदासी बन दे नाल कोई महान नहीं हो गया, निराई गृहस्थी बन दे नाल भी कोई महान नहीं हो गया तो उसने बहुत वड्डा काम कर लिया। क्योंकि असी आम तौर पे यह सुनिया है कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं महानता दित्ती है अते गृहस्थ दे विच रहिंदिआं ही गुरु बाबा जी ने अकाल पुरख रब की प्राप्ति करन दा उपदेश दिता है, जिस विच असी बड़े प्रसन्न हो जाने हां कि असी गुरु बाबे दे मार्ग ते चलण वाले गृहस्थी हां। पर ए नहीं कदे बाणी चो पढ़िया, ए ध्यान नाल नहीं समझिया कि गृहस्थ मार्ग ते ठीक है, महाराज जी ने सानू उत्तम दस्या है, गृहस्थी नू ओ कबूल करदे हन, लेकिन जिस तरह का गृहस्थी गुरु नानक देव जी देखना चाहते हैं वो गृहस्थी किस तरह का होना चाहिए है। वो असी बाणी दे विचों नहीं ज्यादा समझिया अते असी एक अपना ही सिद्धांत जा बना लिया है कि चलो जितना भी सातों थोड़ा बहुत पाठ भजन सेवा आदि होई उन्नी बहुत है, क्योंकि असी गृहस्थी असी अपने आप नू आप ही तसल्ली दे लेने कि असी गृहस्थी जो होए बाल बच्चे पालने हन, आहा हा साडियां ओबलीगेशनज हन, ते साडा थोड़ा भी कीता बहुत प्रवान है, असी जितना भी कर लिया बहुत है, क्योंकि असी गृहस्थी जो होए हुण असी को त्यागी थोड़ो हां जिहड़ा सारा दिन भजन करिए तपस्या करिए। तपस्या करनी साधुआं दा काम है, उदासियां दा काम है, गृहस्थियां दा थोड़ो है। गृहस्थी तो सारा दिन काम करते हैं, वही बड़ी वड्डी तपस्या है। असी जानी अपने आप नूं आप ही जिदा कोई एग्जेम्पशन दे ली हुंदी है, एग्जेम्प्ट कर लिया हुंदा है कि असी

देहरा मसीत सोई पूजा हो निवाज होई। देहरा और मसीत पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे नहीं उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं। ए सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म के नाते लड़न वाले हो

गंधारव तुरक हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन चीजों का असर इंसान से होता है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा?

अपने मन विच एक गल सोचो, एक नैन एक कान, सारियां कोल इको वर्गियां अखां, इको वर्गा नक है, इको वर्गा शरीर है, सारियां कोल अखां ने, सारियां कोल कान, सारियां कोल शरीर, सारियां कोल बोली, खाक कहंदे ने मिट्टी, आतिश कहंदे ने अग, आप कहंदे ने पानी, परमेश्वर ने

साहब जी कहते ने चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है संसार विच जितने भी इंसान हैं सारे पांच तत्वों तो बने।

दो वटियां कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन।

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई सब की कहते हैं।

और कतेबा नु भुला दिता है। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नु मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते जो चल पई है।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मौलाने आपस च पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

इतने पाप कि सच लभदा नहीं सी। राजे जुलमी हो गए, वजीर पाप कमान लग पे, अपने भले वास्ते अपने फायदे वास्ते लोकां नूं लड़ाना, लोकां दा नाश कराना और आप खुश होना। भाई साहब जी कह रहे ने।

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्होंने अपना की काम बना लिया, राजभाग मिल गया, लोगों नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधर सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारां बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा यह काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून बहा देना एक औरत वास्ते, पापे दा वरतिया वरतारा इतना पाप हो गया, रब दे घर नूं ढा के ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो इन राजियां महाराजियां दा वजीरां दा की

बावजूद ही ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे रब का घर हैं, इन्हों का अपमान करना ठीक नहीं, क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये रब का वाहेगुरु का राम का घर है, भगवान का घर है, पर इंसान अज का कहो जिहा हो गया है, एक पासे कहिंदे ओ रब का घर है, जद झगड़े आपस दे हों ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करता। जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलों पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब, मेरा परमेश्वर खुश हो रहे है। अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी ने दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पासे ब्राह्मण नो उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनु ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनु ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा।

गुरु साहबानी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। तो जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ये इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करने वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए और ये जिहड़ा उपदेश है इसनूं अपने दिल विच थां दईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा।

परमेश्वर ने बेअंत बख्शिशां कीतियां होईयां सन। आप दा जन्म बेशक चंबियारा दे घर दा सी, पर निरंकार दे घर विच कोई जात पात दी पुछ नहीं, उत्थे तां गुणा दे पुजारी हन, गुणा दी पूजा होनी है। अगे जात ना जोर है, अगे जात नहीं पूछी जानी। हजूर दी बाणी कहती है, सब ते उत्तम गणो चंडाला, नानक जह मन बसै गोपाला। जे जात दा नीवा है ते उदे मन विच वस गया श्री वाहिगुरु, ता ओ सब तो उत्तम है। सब तो उत्तम जाति किस दी है? सगल धर्म में श्रेष्ट धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। उच्ची जाति किदी है? जेड़ा भाई सास ग्रास मालिक।

ने हाथ कड़ के बाहर भगत दी भेटा मंगी जदों ब्राह्मण ने दे दिती ता मात गंगा ने अपने हाथ तो एक सुंदर कड़ा उतार के पंडित नूं दे दिता भई ये मेरे वलों प्रसाद दे दी भगत जी नूं नाले मेरे वलों नमस्कार भी करी क्योंकि सारी प्रकृति महापुरखां दे चरणां ते नमस्कार करदी है गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करे तूर उद्दम साधु की ताई गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करे उद्दम तूर साधु की ताई किल बिख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई जेड़े महापुरख होंदे ना भगत जन ए तुरदे फिरदे तीर

मन लालच विच आ गया। कुछ दिन बीते ब्राह्मण कहन लगा अपनी घरवाली नू, भाई जे इस तरह असी कड़ा रखी रखिया किसे ने वेख लिया राजे नू शिकायत हो गई।

दीख्या ली उपदेश लिया उच्चारण करो श्री जदों आके उपदेश लिया क्योंकि आप बनारस रहिंदे सन भगत जी ते जितने ब्राह्मण सन सारे ही नाराज हो गए भाई।

मन का सवाल है लेना लेना, आत्मा का सवाल है वंडना वंडना लेना। जे तुहानू शौक लग जे, शौक चढ़ जे, प्रसादे पकावा उत्थे जाके वंडा, फलानी चीज करो लवां उत्थे जाके वंडा, थोड़ा कुछ पेर दसवंध फरूट लवा वंडा, ये कितने सुभाव बन जे, समझो आत्मा चढ़दी कला च जा रही है। हुण देण ते खुशी आती है, शांति मिलती है। जब तक सुभाव खोना खोना खोना, चंचल मन बलवान है। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।